कदीम तरीके तक जानू कदीम का कदीम का जन्नू तक दीम तरीके तक जन्नू तक दीम तक